0: वैसे फिल्म में गीत को तो लता मंगेशकर ही ने गाया था, मगर यहाँ हमने मदन जी की आवाज पेश की, ये सोच करके देखें भाई सुरीले मदन जी ने कैसे खुद गाकर सिखाया होगा लता जी को वो गाना। हैं, लता जी की आवाज में दस्तक का एक गीत आप बस अभी थोड़ी देर में सुनने वाले हैं, मगर पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं आवाज मशहूर राइटर राजेंद्र सिंह बेदी की, जो दस्तक के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे, और जिन्होंने मुझे बताया था दस्तक के लाजवाब शायर मजरू सुल्तानपुरी के बारे में।
1: मजरू साहब फिल्मी दुनिया में मुझसे पहले आए। उस जमाने मजरू, मैं और मेरे दूसरे साथी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा थे। चुनाचे उन्होंने एक इनकलाबी नज्म कही जो योम इकबाल में मेरी सदारत में पढ़ी गई। मैं तो अपने शर्मीलेपन की वजह से ट्राम पे बैठ के घर पहुंच गया, लेकिन मजरू पीछे लोगों को ऑटोग्राफ देते रहे। आधी रात को उठ के देखा तो मजरू का बिस्तर खाली, जब ही मेरा माथा ठनका और सुबह को पता चल गया मजरू को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसके बाद वो साल भर जेल में रहे, जहां मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था। लखनऊ में इनकी बेगम को खत लिखना, तसल्ली तशफी देना मैंने खुद पे ले लिया। इस मामूली इंसान दोस्ती को आज तक न तो मजरू भूले हैं न इनकी बेगम, मेरी बहन फिरदौस। मजरू मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। चुनाचे जब इनके कलाम का मजमुआ गजल के नाम से शाया हुआ तो इसका इंतसाब उन्होंने मेरे ही नाम किया, राजेंद्र सिंह बेदी के नाम। मेरी फिल्म दस्तक में मैंने इनकी ये गजल बजिन से ही उठा के रख दी है।
0: और बहनों और भाइयों, 1970 की छाओ से लिया हुआ वॉल्यूम नंबर 32 का पहला मुकम्मल गीत मजरू साहब की वही गजल है जो दस्तक में ढली। इसमें उस बेचारी लड़की का दर्द है जो बाजार के गली कूचों में खरीदारों की नजरों का निशाना बनी हुई।

0: अच्छा दोस्तों, मदन मोहन की तरह कुछ हद तक बर्मन दादा भी तो उस साल तकदीर की बेरुखी का शिकार हो गए थे। आराधना के लाजवाब गीत 2 वर्षों की लोकप्रियता की खींचातानी में पीछे रह गए थे। और उनकी फिल्म तलाश जो थी ना, उसके साथ भी तो यही हुआ था। बस एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी पर बजा नंबर 23 पर, और बाकी कई गीत गायब रहे, जैसे ये।
1: पलकों के

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: और अब चलिए बहनों और भाइयों, 1970 के हिट गीतों का दूसरा हिस्सा करते हैं शुरू, यानी उस साल की पायदाने नंबर 33 से लेकर 15 तक के गीत आपने पिछले वॉल्यूम में सुने नंबर 31 में, और ये आई गीत नंबर 14 की झलक। मगर बहनों भाइयों, एक मिनट, ये तो वही गीत था जो 1969 में, यानी इससे 1970 से एक साल पहले के सालाना प्रोग्राम में भी बजा था, उस साल की पायदान नंबर 31 पर। मोहन कुमार के निर्देशन में राजेंद्र कुमार और बबीता की वो फिल्म थी अनजाना, और मजेदार पहनियों वाला वो गीत बैंड बाजे के साथ किसी बहुत बड़े महल के बागीचे में फिल्माया गया।

0: कर्पूर
1: नहीं
0: दिया,
1: दिया नहीं पिया।
2: और वार्षिक प्रोग्राम में पायदान नंबर 13 पर डायरेक्टर यश चोपड़ा के दो हीरो थे, धर्मेंद्र और फिरोज खान, आदमी और इंसान, और साथ में दो हसीनाएं भी थीं, सायरा बानू और बड़े सेक्सी रोल में मुमताज।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। वैसे गीत के आखिर में शायद आपको याद होगा, संजीव कुमार उछल कूद करते करते पानी के नाले में छपाक से गिर गए थे। उसके बाद क्या हुआ ये गीत से ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा खैर बहनों और भाइयों, आज मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोले चला जा रहा हूँ ना, इसलिए अब मैं चुप रहकर आपको सुनाने वाला हूँ एक मशहूर पिता के मशहूर बेटे की आवाज। मगर पहले सुनिए छांव से उभरा हुआ वो गीत जिसकी फिल्म में वो बाप बेटे दोनों नजर आए थे।

0: प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजेंद्र भाटिया की फिल्म पवित्र पापी का गीत था ये, जिसमें एक साथ काम कर रहे थे बलराज साहनी और उनके बेटे अजय साहनी। अपने जीवन के एक मोड़ के बारे में अजय साहनी ने मुझे क्या बताया था, जरा सुनिए तो गौर से।
1: ये बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है अमीन साहब। वो हुआ क्या कि मैं दरअसल डायरेक्शन करने वाला था, एक फिल्म है पवित्र पापी, तो उसका मैंने स्क्रिप्ट लिखा और मुझे बुलाया गया वहां से। वालिद साहब ने मुझे कहा, मरहूम बलराज साहनी साहब ने, कि बेटा तुम आओ और पवित्र पापी की डायरेक्शन करो। मगर जब मैं वहां से लौटा रूस से, तो यहां मेरी आदत नहीं थी, कुछ जरा बुरा लगता था मुझे वालिद साहब से पैसे मांगना, और कड़की का आलम था उस जमाने में। तो असीत सेन साहब ने मुझे एक छोटा सा रोल दिया अपनी फिल्म में अनोखी रात में, और 10,000 रुपए उन्होंने मुझे ऑफर किए। तो मैंने कहा ठीक है, पॉकेट मनी एक 6 महीने 1 साल इससे गुजारा कर लूंगा। तो मैंने ऐसे ही यूं ही मतलब शौकिया तौर पर उस फिल्म अनोखी रात में काम किया, और ज्यादा तो मेरा इरादा था डायरेक्शन करने का। लेकिन चूंकि अनोखी रात में लोगों ने मेरा काम पसंद किया, तो पवित्र पापी के प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया साहब ने मुझसे कहा कि बेटे इस पिक्चर की डायरेक्शन करने के बजाय अब तुम इसमें हीरो का काम।
0: जवान अजय साहनी ने अपना नाम बदलकर परीक्षित साहनी कब रखा और क्यों रखा, ये मैं उनसे जरूर पूछूंगा और कभी ना कभी आपको बताऊंगा किसी अगले प्रोग्राम में, प्रोग्राम नहीं मतलब वॉल्यूम में। अभी तो चलिए गीत माला की छाओ में सहमे हुए एक और बड़े ही खूबसूरत गीत के करीब। फिल्म का पहलवानी नाम तो था ट्रक ड्राइवर, मगर उसके कुछ गीत बड़े ही भावुक थे साहब।

चलिए भाई, अब फिर आ गई 1970 की वार्षिक संगीत छड़ी की बारी, मगर इस बारी में दो नहीं बल्कि तीन गीत होंगे और तीनों लाजवाब गीत हैं। पायदान नंबर 10 पर थे वहीदा रहमान के प्रेम पुजारी देव आनंद अपनी ही सबसे पहली डायरेक्शन में, और आहा हा भाई, नीरज साहब ने गीत भी कितने मधुर लिखे और दादा बर्मन का संगीत भी कितना मधुर था।

अच्छा दोस्तों, एक खास बात आपको बता दूं, 1970 के सभी संगीत सीढ़ी वाले गीत मुझे कंप्यूटर पर देखने का मौका मिल गया मेरे बेटे राजिल की मदद से। और इस गीत में, यानी प्रेम पुजारी के इस गीत में, मैंने देखा कि वहीदा रहमान घास के ढेरों में छुपती छुपाती गन्ना चबा रही थी। और मेरा ख्याल है कि शायद इसी वजह से आजकल भी, यानी प्रेम पुजारी के 40 साल के बाद भी, वहीदा जी के बाल भले ही सफेद होने लग गए होंगे मगर दांत आज तक भी मजबूत, खूबसूरत और बिल्कुल मोतियों की तरह सफेद हैं। खैर, अब आप जरा दांतों से नजर हटाइए क्योंकि अब गीतमाला का ताल्लुक किसी भी टूथपेस्ट से नहीं रहा। और साहब, चलिए बढ़ें आगे। उस साल की एनुअल हिट परेड में पायदान नंबर 9 पर एक और जबरदस्त गीत था और बड़ा धमाका हुआ था उस गीत में, क्योंकि असित सेन के निर्देशन में फिर मिले थे गरम धर्म और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। फिल्म का नाम आपको गीत के मुखड़े में ही मिल जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि उसमें हेमा ने बड़ा ब्यूटीफुल डांस करते करते क्या गड़बड़ कर दी थी।

0: अच्छा भाई, आपने गीतमाला की छाओ में के पिछले वॉल्यूम में यानी नंबर 30 में ये तो सुन लिया था कि धर्मेंद्र के दिल में कैसी घंटियां बजी थी जब उन्होंने पहली बार हेमा को देखा था। अब सुनिए हेमा मालिनी से कि इन दोनों की दोस्ती जो थी वो फिर आगे कैसे बढ़ी।
1: बड़े अच्छे आदमी हैं।
2: हेमा जी, ये तो आप सभी के बारे में कहती हैं।
1: इतने अच्छे हैं तभी तो उनके बारे में बता रही हूँ। उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। धर्मेंद्र का घर मेरे घर के करीब है, इसलिए वो कभी कभी हमारे यहाँ चले आते हैं। उन्हें रसम बहुत पसंद है।
2: रसम?
1: जी हाँ, वो हमेशा मुझसे रसम की फरमाइश करते हैं और मैं पूरी कर देती हूँ, मगर वो अपना मक्के की रोटी का वादा कभी पूरा नहीं करते।
0: अच्छा भाई, हेमा मालिनी की एक और म्यूजिकल हिट फिल्म का गीत उस साल सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 8 पर भी तो था। सुबोध मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई उस बहुत ही मजेदार फिल्म में स्कूल बॉय हेयर स्टाइल वाले कम उम्र शशि कपूर को गाना सिखा रही थी हेमा मालिनी।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। बहनों और भाइयों, वो साल सन 1970 संगीत के लिहाज से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का साल कहा जा सकता है। वार्षिक संगीत श्रेणी के 33 गीतों में से 10 गीतों में लक्ष्मी प्यारे ही का संगीत था। इनके बाद 8 तर्जें थी SD वर्मन की और 6 तर्जें कल्याण जी आनंद जी की और चौथे नंबर पर शंकर जयकिशन थे 5 तर्जों के साथ। इस वॉल्यूम का अगला गीत भी शंकर जयकिशन ही की धुन में ढला हुआ है, मगर ये गीत सालाना संगीत श्रेणी का नहीं बल्कि छाओ में रह जाने वाला गीत।

0: इस अमर गीत को लिखना शुरू तो किया था शैलेंद्र ने, मगर क्या हुआ, ये शैलेंद्र जी के होनहार बेटे शैली शैलेंद्र ने मुझे बताया था खुद भी दुनिया छोड़ जाने से कुछ अरसा पहले।
1: तो हम चाहते थे ये गीत किसी तरह से मतलब हम ही इसको कंप्लीट करें, हाँ। और नाम भी मतलब बाबा का है। इसी बात को लेकर हमने राजंकल से कई बार कहा कि राजंकल को जो गीत है हम इसको लिखना चाहेंगे, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा बेटा हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यही कह के उन्होंने 2-3 बार हमें टाल दिया। लेकिन हुआ इत्तेफाक ऐसा कि एक बार हम शंकर जी के म्यूजिक रूम में थे और राजंकल भी वहां आए थे, ये भाई का रिहर्सल था, तो वहां शंकर जी ने कहा कि वो शैलेंद्र का जो गीत है तो इससे क्यों नहीं लिखाते, तो वहां पहली बार मतलब राजंकल ने हमको पूरी सिचुएशन बताई। फिर हमने देखा कि जो हालात हमारी जिंदगी के साथ गुजर रहे हैं उससे ही मिलता जुलता मतलब ये राजू द क्लाउन का किरदार है। लेकिन उसके बाद हम बहुत घबराए, यहाँ तो एक से एक बड़े लोग हैं, लेकिन अचानक 3-4 दिन के बाद अचानक रात के 11 बजे मतलब हमें सारे ख्याल आने लगे और हमने झटपट उनको लिखा और डरते डरते शंकर जी के पास दूसरे दिन हम जो कुछ लिखा था दिया। और फिर एक हफ्ते बाद जब हम गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी हमारी, राजंकल को बहुत पसंद आया, तो उस बात को लेकर हमें काफी खुशी हुई और इस तरह से हमारा ये पहला गीत
0: रिकॉर्ड हुआ। ये

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित, यहाँ श्रेष्ठ टेलरिङ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव भरी।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।